गावन तुदनो पावन पाणी बैसंत्र गावे राजा धर्म दुआरे गावन तुदनो चित गुपत लिख जानन लिख लिख धर्म बिचारे

गावन तुदनो पंडित पढ़न रखी सूर जुग जुग वेदा नाले। गावन तुदनो मोहनिया मन मोहन सुरग माश पयाले। गावन तुदनो रतन उपाय तेरे आठ साठ तीरथ नाले।

सोई सोई सदा साचो साहिब साचा साची नाई है पी होसी जाए न जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी पाती कर कर जिनसी माया जिन उपाई कर कर देख कीता अपना ज्यों तिस दी वड्याई जो तिस भावै सोई करसी फिर हुक्म न करना जाई सो पात साहो साहा पत साहेब नानक रहन रजाई आसा महला पहला सुन वड़ा आखै सब कुए के वड़ वड़ा डीठा होए कीमत पाए ना कहया जाए कहने वाले तेरे रहे समाए।

तेर सेर रिजिक संबाहे ठाकुर काहे मन पाओ करया। उडे उड आवै सै कोसा तिस पाछै बचरे शरया।

पढ़ बहुसिमरत सासत जी कर किरिया खट कर्म करंता। से भगत भले जन नानक जी जो भावै मेरे हर भगवंता। तू आद पुरख अपरंपर करता जी तुद जेवड अवर ना कोई। तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू निहचल करता सोई। तुद आपे भावै सोई वरतै जी तू आपे करहै सो होई। तुद आपे सृष्ट सब उपाई जी तुद आपे सिरज सब गोई। जन नानक गुण गावै करते के जी जो सब सह का जानोई। आशा महला चौथा तू करता सचियार मेंढा साईं।

तू सबनी त्याया जिसनू कृपा करै तिन नाम रतन पाया गुरमुख लादा मन मुख गवाया तुद आप विछोड़या आप मिलाया तू दरियाओ सब तुझ ही माहे तुझ बिन दूजा कोई नाहे जी जंत सब तेरा खेल विजोग मिल विछुड़या संजोगी मेल जिसनो तू जाना है सोई जन जाने हर गुण सद ही आख वखाने जिन हर सेविया तिन सुख पाया सहजे ही हर नाम समाया तू आपे करता तेरा किया सब होए तुद बिन दूजा अवर ना कोए तू कर कर वेखा है जान है सोए जन नानक गुरमुख प्रगट होए आसा महला पहला तित सरवरड़ पहिले निवासा पानी पावक तिन है किया पंकज मोह पाग नहीं चल हम देखा तह डूबी अले।

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कबियो बाच बेनती चौपाई। हमरी करो हाथ दय रक्षा, पूरन होए चित की इच्छा। तब चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रत पारा। हमरे दुष्ट सब तुम कावो, आप हाथ दय मोहे बचावो। सुखी बसे मोरो परिवारा, सेवक सिख सबै करता।

और है काहे हमारा, जवन काल सब जगत बनायो, देव दैत जच्छन उपजायो, आद अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा।

घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। चीटी ते कुंचर अस थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछाने, घट घट के पट पट की जाने। जब उदकर्ख करा कर तारा, प्रजा तरत तब देहे अपारा। जब आकर्ख करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देह तार सब हूँ। जेते बदन सृष्ट सब तार, आप अपनी बूझ उचार। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत बेद भेद अर आलम। निरंकार निर्विकार निर्लंभ, आद अनिल अनाद असंभ। ताका मूड उचारत पेदा, जाको पेव न पावत बेदा। ताको कर पाहन अनुमानत, महामूड काश भेद न जानत। महादेव कौ कहत सदा सेव, निरंकार का चीनत नह पेव। आप अपनी बुद्ध है जेती, बरनत भिन्न भिन्न तुहे तेती।

असिख संगरो दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेश करो रण खाता जे अस तुझ तब सरणी परे तिनके दुष्ट दुखत हवै मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे।

नहीं आने हो। राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहे मत एक ना माने हो। सिमरत शास्त्र वेद सब बहु भेद।

नित रख उतारो तम संसार चरण लग तरी सब नानक ब्रह्म पसारू। सलोक महला पंजवा।

पौड़ी। तिथै तू समरथ जिथै कोहे नाहे, ओथै तेरी राखो अग्नि उदर माहे। सुन कै जम के दूत नाए तेरै छड जाहे, पहु जल बिखम असगाहौ गुर शब्दी पार पाहे। जिन कौ लगी प्यास अमृत से खाहे, कल मैं एहो पुन गुण गोविंद गाहे। सब

श्री हर कृष्ण ते आई है, जिस डिठै सब दुख जाए। एक बहादुर सिमरै कर नौ निध आवै ताए, सब थाई होए सहाय। दसवें पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद

ਸਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਆਪ ਸਭਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਦਰੋਂ ਕਰੋਂ ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਧਕ ਭਰੋਸਾ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹੋਏ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਇਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲਿਆ ਕਰ ਦੇਣ। ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਾਵਨ ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੋ ਕਰਕੇ ਜੋ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਦਾਤ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਹੈ, ਰਾਗ ਸੋਰਠ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਪਾਵਨ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸ਼ਬਦ, ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅੰਗ 623 ਔਰ 624 ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੈ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਪਾਵਨ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਬਖਸ਼ਣ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀ ਪਰਲੋਕ ਵੀ ਸੁਹੇਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਤਸੰਗ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਪਾਠ ਹੋਣਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਪਾਠ ਹੋਣਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਇਕਾਗਰਤਾ ਸਹਿਤ ਸ਼ੁੱਧ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਗੌੜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਸਲੋਕ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਦਿ ਗੁਰ ਏ ਨਮੈ, ਜੁਗਾਦ ਗੁਰ ਏ ਨਮੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਏ ਨਮੈ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਦੇਵ ਨਮੈ। ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਸਿਮਰੋ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਵੋ, ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਤਨ ਮਾਹੀ ਮਿਟਾਵੋ, ਸਿਮਰੋ ਜਾਸ ਬਿਸੰਬਰ ਏਕੈ, ਨਾਮ ਜਪਤ ਅਗਨਤ ਅਨੇਕੈ। ਵੇਦ ਪੁਰਾਨ ਸਿਮਰਤ ਸੁਧਾਖਿਅਰ, ਕੀਨੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਏਕੋ ਆਖਿਅਰ, ਕਿਨਕਾ ਏਕ ਜਿਸ ਜੀ ਬਸਾਵੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਗਨੀ ਨ ਆਵੈ। ਕਾਂਖੀ ਏਕੈ ਦਰਸ ਤੁਹਾਰੋ, ਨਾਨਕ ਉਨ ਸੰਗ ਮੋਹੇ ਉਧਾਰੋ। ਸੁਖ ਮਨੀ ਸੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ, ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੈ ਮਨ ਬਿਸਰਾਮ ਰਹਾਉ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਗਰਭ ਨਾ ਬਸੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਦੁਖ ਜਮ ਨਸੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਕਾਲ ਪਰਹਰੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਦੁਸ਼ਮਨ ਟਰੈ। ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰਤ ਕਛ ਬੇਗਨ ਨ ਲਾਗੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਅਨ ਦਿਨ ਜਾਗੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਭਉ ਨਾ ਵਿਆਪੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਦੁਖ ਨਾ ਸੰਤਾਪੈ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ, ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਰੰਗ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਰਿਧ ਸਿਧ ਨਉ ਨਿਧ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਤਤ ਬੁੱਧ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਜਪ ਤਪ ਪੂਜਾ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਬਿਨ ਸਹਿ ਦੂਜਾ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਤੀਰਥ ਇਸਨਾਨੀ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਦਰਗਾਹ ਮਾਨੀ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਹੋਏ ਸੋ ਭਲਾ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਸੋ ਫਲ ਫਲਾ, ਸੇ ਸਿਮਰਹਿ ਜਿਨ ਆਪ ਸਿਮਰਾਏ, ਨਾਨਕ ਤਾ ਕੈ ਲਾਗੋ ਪਾਏ। ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਸਭ ਤੇ ਉੱਚਾ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਉਦਰੇ ਮੂਚਾ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੁੱਝੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਸਭ ਕੇਸ਼ ਸੂਜੈ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਨਾਹੀ ਜਮ ਤ੍ਰਾਸਾ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਪੂਰਨ ਆਸਾ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਮਨ ਕੀ ਮਲ ਜਾਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਰਿਧ ਮਾਹੇ ਸਮਾਏ। ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਬਸੈ ਸਾਧ ਕੀ ਰਸਨਾ, ਨਾਨਕ ਜਨ ਕਾ ਦਾਸਨ ਦਸਨਾ। ਪ੍ਰਭ ਕੌ ਸਿਮਰਹਿ ਸੇ ਤਨਵੰਤੇ, ਪ੍ਰਭ ਕੌ ਸਿਮਰਹਿ ਸੇ ਪਤਵੰਤੇ, ਪ੍ਰਭ ਕੌ ਸਿਮਰਹਿ ਸੇ ਜਨ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਪ੍ਰਭ ਕੌ ਸਿਮਰਹਿ ਸੇ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਪ੍ਰਭ ਕੌ ਸਿਮਰਹਿ ਸੇ ਬੇਮੁਹਤਾਜੀ, ਪ੍ਰਭ ਕੌ ਸਿਮਰਹਿ ਸੇ ਸਰਬ ਕੇ ਰਾਜੇ, ਪ੍ਰਭ ਕੌ ਸਿਮਰਹਿ ਸੇ ਸੁਖਵਾਸੀ, ਪ੍ਰਭ ਕੌ ਸਿਮਰਹਿ ਸਦਾ ਅਬੇਨਾਸੀ। ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਲਾਗੇ ਜਿਨ ਆਪ ਦਇਆਲਾ, ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੀ ਮੰਗੈ ਰਵਾਲਾ। ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰਹਿ ਸੇ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ, ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰਹਿ ਤਿਨ ਸਦ ਬਲਹਾਰੀ। ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰਹਿ ਸੇ ਮੁਖ ਸੁਹਾਵੇ, ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰਹਿ ਤਿਨ ਸੁਖ ਬਿਹਾਵੈ। ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰਹਿ ਤਿਨ ਆਤਮ ਜੀਤਾ, ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰਹਿ ਤਿਨ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤਾ, ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰਹਿ ਤਿਨ ਅਨੰਦ ਕਨੇਰੇ, ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰਹਿ ਬਸੇ ਹਰ ਨੇਰੇ।
संत कृपा ते आन दिन जाग, नानक सिमरन पूरे भाग। प्रभ कै सिमरन कार्ज पूरे, प्रभ कै सिमरन कबहु न चूरे। प्रभ कै सिमरन हर गुण बानी, प्रभ कै सिमरन सहज समानी। प्रभ कै सिमरन निहचल आसन, प्रभ कै सिमरन कमल बिगासन। प्रभ कै सिमरन अनहद झुनकार, सुख प्रभ सिमरन का अंत न पार। सिमरह से जान जिन कौ प्रभ माया, नानक तीन जान सरणी पाया। हर सिमरन कर भगत प्रगटाए, हर सिमरन लग बेद उपाए। हर सिमरन भये सिद जति दाते, हर सिमरन नीच चहो कुंठ जाते। हर सिमरन तारी सब तरना, सिमर सिमर हर कारण करना। हर सिमरन कियो सगल अकारा, हर सिमरन मैं आप निरंकार। कर कृपा जिसे आप बुझाया, नानक गुरमुख हर सिमरन तिन पाया। सलोक दीन दर्द दुख भंजना, घट घट नाथ अनाथ। शरण कुमारी आयो, नानक के प्रभ साथ। अष्टपदी जह मात पिता, सुत मीत न पाई। मन ऊहा नाम तेरा संग सहाई। जय महाभयान दूत जमदल, तह केवल नाम संग तेरा चलै। जह मुश्कल होवै अत भारी, हर को नाम खिन माहे उधारी। अनक पुनः चरण करत नहीं तरै, हर को नाम कोट पाप पर हरै। गुरमुख नाम जपहो मन मेरे, नानक पावह सुख कनेरे। सगल सृष्ट को राजा दुखिया, हर का नाम जपत होए सुखिया। लाख करोरी बंधन पर, हर का नाम जपत निस्तरै। अनेक माया रंग तिख ना बुझावै, हर का नाम जपत आघावै। जिहे मार्ग एहो जात अकेला, तह हर नाम संग होत सुहेला। ऐसा नाम मन सदा त्याइयै, नानक गुरमुख परम गत पाइयै। छूटत नहीं कोट लख बाही, नाम जपत तह पार पराही। अनक बिघन जय आए संघारै, हर का नाम तत्काल उधारै। अनेक जोन जन मैं मर जाम, नाम जपत पावै बिसराम। हौ मैला मल कबहु न धोवै, हर का नाम कोट पाप खोवै। ऐसा नाम जप हो मन रंग, नानक पाइयै साधक ऐ संग। जिह मार्ग के गने जाहि न कोसा, हर का नाम ऊहा संग तोसा। जिह पैंडै महा अंद गुबारा, हर का नाम संग उजियारा। जह पंथ तेरा को न सियानु, हर का नाम तह नाल पछानु। जह महा भयान तपत बहु काम, तह हर के नाम की तुम ऊपर शाम। जहां त्रिखा मन तुज अकरखै, तह नानक हर हर अमृत बरखै। भगत जना की बरतन नाम, संत जना कै मन बिसराम। हर का नाम दास की ओट, हर कै नाम उधरे जन कोट। हर जस करत संत दिन रात, हर हर औखद साधक मात। हर जन कै हर नाम निधान, पार ब्रह्म जन की नो दान। मन तन रंग रते रंग एकै, नानक जन कै बिरत बबेकै। हर का नाम जन कौ मुकत जुगत, हर कै नाम जन कौ त्रिपत भुगत। हर का नाम जन का रूप रंग, हर नाम जपत कब परै न भंग। हर का नाम जन की वडियाई, हर कै नाम जन सुबा पाई। हर का नाम जन कौ भोग जोग, हर नाम जपत कछ नाहे बियोग। जन राता हर नाम की सेवा, नानक पूजै हर हर देवा। हर हर जन कै मालख जीना, हर धन जन कौ आप प्रभ दीना। हर हर जन कै ओट सताणी, हर प्रताप जन अवर न जानी। ओत पोत जन हर रस राते, सुन समाद नाम रास माते। आठ पहर जन हर हर जपै, हर का भगत प्रगट नहीं छपै। हर की भगत मुकत बहु करे, नानक जन संग केते तरे। पार जात एहो हर को नाम, काम तेन हर हर गुण गाम। सब ते उत्तम हर की कथा, नाम सुनत दर्द दुख लथा। नाम की महिमा संत रिद वसै, संत प्रताप दुर्त सब नसै। संत का संग वड भागी पाइयै, संत की सेवा नाम त्याइयै। नाम तुल कश अवर न होए, नानक गुरमुख नाम पावै जन कोए। सलोक बहु शास्त्र बहु सिमृति, पेखे सर्ब टंडोल। पूजस नाही हर हरे, नानक नाम अमोल। अष्टपदी जाप ताप ज्ञान सब ध्यान, खाट शास्त्र सिमृत वख्यान। योग अभ्यास कर्म त्रम क्रिया, सगल त्याग बन मध्य फिरिया।
अनेक प्रकार किए बहु जतना पूर्ण दान होमे बहु रत्ना शरीर कटाए होमय कर राति वरत निम करे बहु पाती नहीं तुल राम नाम विचार नानक गुरमुख नाम जपिए एक बार नौ खंड प्रथमी फिरे चेर जीवे महा उदास तपि सरथी वै अग्न माहे होमत प्राण कनक अशब है वर भूम दान नेवली कर्म करे बहु आसन जैन मार्ग संयम अत साधन निमुख निमुख कर शरीर कटावे तौ पी होमे मैल न जावे हर के नाम सम सर कश नाहे नानक गुर मुख नाम जपत गत पाहे मन कामना तीरथ देह छुटै गर्भ गुमान ना मन ते हुटै सोच करै दिन स अर रात मन की मैल ना तन ते जात इस देही कौ बहु साधना करै मन ते कबहु न बिखिया टरै जल तो वह बहु देह अनीत सुध कहाँ होय काची पीत मन हर के नाम की महिमा ऊच नानक नाम उदरे पतत बहमूच बहुत स्याण पजम का भाव व्यापै अनेक जतन कर त्रिशन ना त्रापै भेख अनेक अग्न नहीं बुझै कोट उपाव दरगह नहीं सिजै छूटस नाही ऊब पयाल मोहे व्यापै माया जाल अवर करतूत सगली जम डानै गोविंद भजन बिन तिल नहीं मानै हर का नाम जपत दुख जाए नानक बोलै सहज सुभाए चार पदार्थ जे को मांगै साध जना की सेवा लागै जे को अपना दुख मिटावै हर हर नाम हृदय सद गावै जे को अपने सो बालूरै साध संग ए होमै शोरै जे को जन्म मरण ते डरै साध जना की सरणी परै जिस जन को प्रभ दर्श पियासा नानक ताकै बल बल जासा सगल पुरख मैं पुरख प्रधान साध संग जाका मिटै अभिमान आपस कौ जो जाने नीचा सो गनिए सब ते ऊंचा जाका मन होए सगल किरीना हर हर नाम तिन घट घट चीना मन अपने ते बुरा मिटाना पेखै सगल श्रेष्ठ साजना सुख दुख जन सम दृष्टिता नानक पाप पुन नहीं लेपा निरतन को धन तेरु नाऊ निथावे कौ नाऊ तेरा थाऊ निमाने कौ प्रभ तेरु मान सगल घटा कौ देवा दान करण करावन हार स्वामी सगल घटा के अंतर जामी अपने गात मित जानो आपे आपन संग आप प्रभ राते तुमरी उस्तत तुम ते होए नानक अवर न जान सकोए सर्व धर्म मैं श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल कर्म सगल क्रिया मैं उत्तम क्रिया साध संग दुर्मत मल हिरिया सगल उद्दम मैं उद्दम भला हर का नाम जप हो जी सदा सगल बानी मैं अमृत बानी हर को जस सुन रसन बखानी सगल थान ते ओह उत्तम थान नानक जिहे घट वसै हर नाम सलोक निर्गुण यार ए अन्या सो प्रभ सदा संभाल जिन किया ते सचीत रख नानक निबही नाल अष्टपदी रमैया के गुण चेत परानी कवन मूल ते कवन दृष्टानी जिन तू साज सवार सिगारिया गर्भ अगन मैं जिने उबारिया बार बविस था तुझे प्यारे दूध पर जोवन भोजन सुख सूद बिरद भया ऊपर साख सैन मुख अप्याओ बैठ कौ दैन इहो निर्गुण गुण कछु न बूझै बख्श लेहो तौ नानक सीजै जिह प्रसाद धर ऊपर सुख बसै सोत भ्रात मीत बंता संग हसै जिह प्रसाद पीवै शीतल जला सुखदाई पवन पावक अमुला जिह प्रसाद भोगै सब रसा सगल समग्री संग साथ बसा दीने हस्त पाव करन नेत्र रसना तिसै त्याग अवर संग रचना ऐसे दोख मूड अंध ब्यापे नानक काढ लिहु प्रभ आपे आद अंत जो रख नहार तिस स्यों प्रीत न करै गवार जाकी सेवा नव नेद पावै ता स्यों मूड़ा मन नहीं लावै जो ठाकुर साध सदा हजूरे ताको अंधा जानत दूरे जाकी टहल पावै दरगै मान तिसै बिसारै मुगद अजान सदा सदा ए भूलन हार नानक रख नहार अपार रतन त्याग कौडी संग रचै साच छोट झूठ संग मचै जो छडना सो अस थिर करमानै जो होवन सो दूर परानै छोड़ जाए तिसका श्रम करै संग सहाय तिस पर हरै चंदन लेप उतारै धोए गर तहब प्रीत भस्म संग होए अंधकूप मैं पतत बिकराल नानक काढ लेहु प्रभ दयाल करतूत पशु की मानस जात लोक पचारा करै दिन रात
बाहर भेखु अंतर मल माया शपश नाहे कश करै छपाया बाहर ज्ञान ध्यान इसनान अंतर व्यापै लोभ सुवान अंतर अगन बाहर तन सुआ गल पाथर कैसे करै अथा जाकै अंतर बसै प्रभ आप नानक ते जन सहज समात सुन अंधा कैसे मार्ग पावै कर गह लेहो ओढ़ निभावै कहा बुझारत बूझै डोरा निस कहियै तौ समझै पूरा कहा बिसन पद गावै गुंग जतन करै तौ पी सुर भंग कह पिंगल पर्वत पर भवन नहीं होत ऊहां उस गवन करतार करुणा मैं दीन बेनती करै नानक तुमरी कृपा करै संग सहाई सो आवे न चीत जो बैराई तास्यो प्रीत बलुआ के ग्रह पीतर बसै आनंद केल माया रंग रसै दृढ़ कर मनै मनै प्रतीत काल न आवे मूढ़े चीत बैर विरोध काम क्रोध मोह झूठ बिकार महा लोभ ध्रुव याहू जुगत बिहाने कई जन्म नानक राख ले हो आपन कर कर्म तू ठाकुर तुम पै अरदास जियो पिंड सब तेरी रास तुम मात पिता हम बारिक तेरे तुमरी कृपा मैं सुख कनेरे कोई न जाने तुमरा अंत ऊचे ते ऊचा भगवंत सगल समग्री तुमरे सूत्र धारी तुम ते होए सो आज्ञाकारी तुमरी गत मित तुम ही जाने नानक दा सदा कुर्बानी श्लोक देन हार प्रभ छोड़कै लागै आन सुआए नानक कहू न सी जई बिन नावै पत जाए अष्टपदी दस वस्तु ले पाछै पावै एक वस्त कारण बिखोट गवावै एक पी न दे दस पी हर ले तौ मूड़ा कहो कहा करे जिस ठाकुर सिउ नाही चारा ताको कीजै सद नमस्कारा जाकै मन लागा प्रभ मीठा सर्व सुख ताहु मन बूठा जिस जन अपना हुक्म मनाया सर्व थोक नानक तिन पाया अगनत साहु अपनी दे रास खाक पीत बरतै आनंद उलास अपनी अमान कश बहुर साहुले अज्ञानी मन रोस करे अपनी प्रतीत आप ही खोवै बहुरस का विश्वास न होवै जिस की बस्त तिस आगै राखै प्रभ की आज्ञा मानै माथै उसदे चौगुन करे निहाल नानक साहिब सदा दयाल अनेक भांत माया के हेत सरपर होवत जान अनेत बिरख की छाया सिउ रंग लावै ऊ बिनसै ऊ मन पछुतावै जो दिसै सो चलनहार लपत रहो तह अंध अंधार बटाऊ सिउ जो लावै नेह ताकौ हाथ न आवै के मन हर के नाम की प्रीत सुखदाई कर कृपा नानक आप लय लाई मिथ्या तन धन कुटुंब सबाया मिथ्या होमै ममता माया मिथ्या राज जोगन धन माल मिथ्या काम क्रोध बिकराल मिथ्या रथ हस्ती असव बस्त्रा मिथ्या रंग संग माया पेक हस्ता मिथ्या ध्रुव मोह अभिमान मिथ्या आपस ऊपर करत गुमान अस्थिर भगत साध की सरन नानक जप जप जीवै हर के चरण मिथ्या श्रवण पर निंदा सुनै मिथ्या हस्त पर दर्भ कौ हिरै मिथ्या नेत्र पेखत परत्रै रूपाद मिथ्या रसना भोजन अनुस्वाद मिथ्या चरण पर विकार को तावै मिथ्या मन पर लोभ लुभावै मिथ्या तान नहीं पर उपकारा मिथ्या बास लेत बिकारा बिन बूझे मिथ्या सब भये सफल देह नानक हर हर नाम लय बिरथी साकत की आर जा साच बिना कह होवत सूचा बिरथा नाम बिना तन अंध मुख आवत ताकै दुर्गंध बिन सिमरण दिन रहन बिरथा बेहाय मेघ बिना ज्यों कीती जाए गोबिंद भजन बिन बिरथे सब काम ज्यों किरपन के नरारथ दाम धन धन ते जन जिह घट बस्यो हर नाउ नानक ताकै बल बल जाओ रहत अवर काश अवर कमावत मन नहीं प्रीत मुख हो गंड लावत जानन हार प्रभु प्रवीन बाहर भेख ना काहू पीन अवर उपदेसै आप न करै आवत जावत जन मै मरै जिसकै अंतर बसै निरंकार तिस की सीख तरै संसार जो तुम भाने तिन प्रभ जाता नानक ऊन जान चरण पराता करो बेनती पार ब्रह्म सब जाने अपना किया आपे मन आपे आप करत नबेरा किसै दूर जनावत किसै बुझावत नेरा
उपाव सियानप सगल ते रहत सब कछ जाने आत्म की रहत जिस भावै तिस लय लड़ लाए थन तनंतर रहया समाए सो सेवक जिस कृपा करी नेमख नेमख जाप नानक हरी सलोक काम क्रोध अर लोभ मोह बिन सजाए अहमेव नानक प्रभ शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव अष्टपदी जिह प्रसाद शतहि अमृत खाहे तिस ठाकुर को रख मन माहे जिह प्रसाद सुगंधत तन लावै तिस को सिमरत परम गत पावै जिह प्रसाद बसै सुख मंदर तिसे त्याए सदा मन अंदर जिह प्रसाद ग्रह संग सुख बसना आठ पहर सिमरहु तिस रसना जिह प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा त्याई त्यावन जोग जिह प्रसाद पाठ पटंबर हंडावै तिसे त्याग कत अवर लुभावै जिह प्रसाद सुख सेज सोई जय मन आठ पहर ताका जस गावी जय जिह प्रसाद तुझ सब को मानै मुख ताकू जस रसन बखानै जिह प्रसाद तेरु रहता धर्म मन सदा त्याए केवल पार ब्रह्म प्रभ जी जपत दरगह मान पावै नानक पात सेती घर जावै जिह प्रसाद आरोग कंचन देही लिवलावौ तिस राम स्नेही जिह प्रसाद तेरा उला रहत मन सुख पावै हर हर जस कहत जिह प्रसाद तेरे सगल शिदर ढाके मन सरणी पर ठाकुर प्रभ ताकै जिह प्रसाद तुझ को ना पहुचै मन सास सास सिमरहो प्रभ ऊचे जिह प्रसाद पाई दुर्लभ देहे नानक ताकी भगत करे हे जिह प्रसाद आपूखन पहरी जय मन तिस सिमरत क्यों आलस की जय जिह प्रसाद असव हस्त असवारी मन तिस प्रभ को कबहू ना बिसारी जिह प्रसाद बाग मिलख तना राख परोए प्रभ आपू ने मना जिन तेरी मन बनत बनाई उठत बैठत सद तिसै त्याई तिसहै त्याए जो एक अलख है इहां उहां नानक तेरी रखै जिह प्रसाद करहै पुन बहुदान मन आठ पहर कर तिसका ध्यान जिह प्रसाद तू आचार व्यवहारी तिस प्रभ कौ सास सास चितारी जिह प्रसाद तेरा सुंदर रूप सो प्रभ सिमरौ सदा अनूप जिह प्रसाद तेरी नीकी जात सो प्रभ सिमर सदा दिन रात जिह प्रसाद तेरी पत रहै गुर प्रसाद नानक जस कहै जिह प्रसाद सुनै करण नाद जिह प्रसाद पेखै बिस्माद जिह प्रसाद बोलै अमृत रसना जिह प्रसाद सुख सहजे बसना जिह प्रसाद हस्त कर चला है जिह प्रसाद संपूर्ण फल है जिह प्रसाद परम गत पावै जिह प्रसाद सुख सहज समावै ऐसा प्रभ त्याग अवर कत लाग हो गुर प्रसाद नानक मन जाग हो जिह प्रसाद तू प्रगट संसार तिस प्रभ कौ मूल न मन हो बिसार जिह प्रसाद तेरा प्रताप रे मन मूड तू ताकौ जाप जिह प्रसाद तेरे कार्य पूरे तिसहै जान मन सदा हजूरे जिह प्रसाद तू पावै साच रे मन मेरे तू तास्यों राच जिह प्रसाद सब की गत होए नानक जाप जपै जप सोए आप जपाए जपै सो नाओ आप गावाए सो हर गुण गाओ प्रभ कृपा ते होए प्रगास प्रभु दया ते कमल बिगास प्रभ सो प्रसन्न बसै मन सोए प्रभ दया ते मत उत्तम होए सर्ब निधान प्रभ तेरी माया आपो कछु न किन्हू लया जित जित लावो तित लगै हर नाथ नानक इन कै कछु न हाथ सलोक अगम अगाध पार ब्रह्म सोए जो जो कहे सो मुक्ता होए सुन मीता नानक बिनवंता साध जना की अचरज कथा अष्टपदी साध कह संग मुख उजल होत साध संग मल सगली खोत साध कह संग मिटै अभिमान साध कह संग प्रगटे सो ज्ञान साध कह संग बुझै प्रभ नेरा साध संग सब होतन बेरा साध कह संग पाए नाम रतन साध कह संग एक ऊपर जतन साध की महिमा वर्णै कौन प्राणी नानक साध की शोभा प्रभ माहे समानी साध कह संग अगोचर मिलै साध कह संग सदा पर फुलै साध कह संग आवै बस पंचा साध संग अमृत रस पहुंचा साध संग होए सब की रेन साध कै संग मनोहर बैन साध कै संग न कतहु तावै साध संग आस थे तो मन पावै
साध कै संग माया ते भिन्न साध संग नानक प्रभ सुप्रसन्न साध संग दुश्मन सब मीत साधु कै संग महापुनीत साध संग के सेव नहीं बैर साध कै संग न बीगा पैर साध कै संग ना ही को मंदा साध संग जाने परमानंदा साध कै संग ना ही हौ ताप साध कै संग तजै सब आप आपे जाने साध बढ़ाई नानक साध प्रभु बने आई साध कै संग न कबहू तावै साध कै संग सदा सुख पावै साध संग बस अगोचरल है साधु कै संग आजार सहै साध कै संग बसै थान उचै साधु कै संग महल पहुचै साध कै संग दृढ़ सब धर्म साध कै संग केवल पार ब्रह्म साध कै संग पाए नाम निधान नानक साधु कै कुर्बान साध कै संग सब कुल उधारै साध संग साजन मीत कुटुंब ने सतारै साधु कै संग सो धन पावै जिस धन ते सब को वरसावै साध संग धर्म राय करे सेवा साध कै संग सोभा सुर देवा साधु कै संग पाप पलायन साध संग अमृत गुण गायन साध कै संग सर्ब थान गम नानक साध कै संग सफल जन्म साध कै संग नहीं काश काल दर्शन भेटत हो तिनिहाल साध कै संग कलुखत हरै साध कै संग नरक पर हरै साध कै संग इहां उहां सोहेला साध संग बिशरत हर मेला जो इच्छा सोई फल पावे साध कै संग न बिरथा जावे पार ब्रह्म साध रिद बसै नानक उधरै साध सुन रसै साध कै संग सुनो हर नाउ साध संग हर के गुण गाओ साध कै संग न मन ते बिसरै साध संग सर पर निस्तरै साध कै संग लगै प्रभ मीठा साधु कै संग घट घट डीठा साध संग पै आज्ञाकारी साध संग गत पई हमारी साध कै संग मिटे सब रोग नानक साध भेटे संजोग साध की महिमा बेद न जानै जे तसनै तेता बख्याना है साध की उपमा तेहो गुण ते दूर साध की उपमा रही भरपूर साध की शोभा का नाही अंत साध की शोभा सदा बेअंत साध की शोभा ऊच ते ऊची साध की शोभा मूच ते मूची साध की शोभा साध बने आई नानक साध प्रभ भेद न पाई सलोक मन साचा मुख साचा सोए अवर न पेखै एकस बिन कोए नानक ए लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए अष्टपदी ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप जैसे जल में कमल अलेप ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोख जैसे सूर सर्व कौ सोख ब्रह्म ज्ञानी कै दृष्ट समान जैसे राज रंक कौ लागै तुल पवान ब्रह्म ज्ञानी कै तीरज एक ज्यों वसुधा को खोदै को चंदन लेप ब्रह्म ज्ञानी का यह गुनाओ नानक ज्यों पावक का सहज सुभाव ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला जैसे मैल ना लागै जला ब्रह्म ज्ञानी कै मन होए प्रगास जैसे धर ऊपर आकाश ब्रह्म ज्ञानी कै मित्र सत्र समान ब्रह्म ज्ञानी कै नाही अभिमान ब्रह्म ज्ञानी ऊच ते ऊचा मन अपने है सब ते नीचा ब्रह्म ज्ञानी से जन भय नानक जेन प्रभ आप करे ब्रह्म ज्ञानी सगल कीरीना आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चीना ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर माया ब्रह्म ज्ञानी ते कछु बुरा न पाया ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान ब्रह्म ज्ञानी एक ऊपर आस ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश ब्रह्म ज्ञानी का गरीबी समाहा ब्रह्म ज्ञानी पार उपकार उमाहा ब्रह्म ज्ञानी कै नाही तंदा ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंधा ब्रह्म ज्ञानी कै होए सो भला ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उधार नानक ब्रह्म ज्ञानी जपै सगल संसार ब्रह्म ज्ञानी कै रंग ब्रह्म ज्ञानी कै बसै प्रभ संग ब्रह्म ज्ञानी कै नाम आधार ब्रह्म ज्ञानी कै नाम प्रवार ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत ब्रह्म ज्ञानी अहंग बुद्ध त्यागत ब्रह्म ज्ञानी कै मन परमानंद ब्रह्म ज्ञानी कै घर सदा आनंद
ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास, नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता, ब्रह्म ज्ञानी एक संग हेता। ब्रह्म ज्ञानी का होए अचिंत, ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत। ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रभ आप, ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप। ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाई है, ब्रह्म ज्ञानी कौ बल बल जाई है। ब्रह्म ज्ञानी कौ खोजै महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाहे, ब्रह्म ज्ञानी कै सगल मन माहे। ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद, ब्रह्म ज्ञानी कौ सदा आदेश। ब्रह्म ज्ञानी का कथया ना जाय अध्याखर, ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर। ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाने, ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने। ब्रह्म ज्ञानी का अंत ना पार, नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार। ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्ट का करता, ब्रह्म ज्ञानी साध जीव है नहीं मरता। ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरख विधाता। ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ। ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार। ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी, नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का धनी श्लोक। उरत हरै जो अंतर नाम, सर्व मैं भेखै भगवान। निमुख निमुख ठाकुर नमस्कार, नानक ओह अपरस सगल निस्तार। अष्टपदी मिथ्या नाही रसना परस, मन मैं प्रीत निरंजन दर्श। परत्रै रूप न भेखै नेत्र, साधकी टहल संत संग हेत। करन ना सुने काहू की निंदा, सब ते जाने आपस को मंदा। गुर प्रसाद बिख्या पर हरै, मन की भाषना मन ते टरै। इंद्री जित पंच दोख ते रहत, नानक कोट मधे को ऐसा अपरस। बैसनो सो जिस ऊपर सो प्रसन्न, बिस्न की माया ते हुए भिन्न। कर्म करत हुवे निह कर्म, तिस बैष्णु का निर्मल धर्म। काहू फल की इच्छा नहीं बाछै, केवल भगत कीर्तन संग राचै। मन तन अंतर सिमरन गोपाल, सब ऊपर होवत कृपाल। आप दृढ़ अवरह नाम जपावै, नानक ओ बैष्णु परम गत पावै। भगवती भगवंत भगत का रंग, सगल त्यागै दुष्ट का संग। मन ते बिनसै सगला भरम, कर पूजै सगल पार ब्रह्म। साध संग पापा मल खोवै, तिस भगवती की मत उत्तम होवै। भगवंत की टहल करै नित नीत, मन तन अर्पै बिसन प्रीत। हर के चरण हृदय बसावै, नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावै। सो पंडित जो मन प्रबुदै, राम नाम आत्म मै सोदै। राम नाम सार रस पीवै, उस पंडित कै उपदेश जग जीवै। हर की कथा हृदय बसावै, सो पंडित फिर जोन न आवै। वेद पुराण सिमरत बूझै मूल, सूखम मैं जानै असथूल। चहुवरना कौ दे उपदेश, नानक उस पंडित कौ सदा आदेश। बीज मंत्र सर्व को ज्ञान, चहुवरना मैं जपै को नाम। जो जो जपै तिस की गत होए, साध संग पावै जन कोए। कर कृपा अंतर उरत हरै, पाशु प्रेत मुगद पाथर को तारै। सर्व रोग का औखद नाम, कल्याण रूप मंगल गुण गाम। काहू जुगत कितै न पाइय धर्म, नानक तिस मिलै जिस लिखिया तुर कर्म। जिसकै मन पार ब्रह्म का निवास, तिस का नाम सत रामदास। आत्म राम तिस नदरी आया, दास दसंतन पाए तिन पाया। सदा निकट निकट हर जान, सो दास दरगै परवान। अपने दास को आप कृपा करै, तिस दास को सब सोजी परै। सगल संग आत्म उदास, ऐसी जुगत नानक रामदास। प्रभ की आज्ञा आत्म हितावै, जीवन मुक्त सो कहावै। तैसा हरख तैसा उस सोग, सदा आनंद तै नहीं वियोग। तैसा सुवर्ण तैसी उस माटी, तैसा अमृत तैसी बेख खाटी। तैसा मान तैसा अभिमान, तैसा रंक तैसा राजान। जो व्रताए साई जुगत, नानक ओ पुरख कहिए जीवन मुक्त। पार ब्रह्म के सगले ठाउ, जित जित घर राखै तैसा तिन नाउ। आपे करण करावण जोग, प्रभ पावै सोई फुन होग। पसरेओ आप होए आनत तरंग, लखे न जाहे पार ब्रह्म के रंग। जैसी मत दे तैसा प्रगास, पार ब्रह्म करता अविनाश। सदा सदा सदा दयाल, सिमर सिमर नानक पय निहाल। श्लोक
ਉਸਤਤ ਕਰੇ ਅਨੇਕ ਜਨ ਅੰਤ ਨ ਪਾਰਾਵਾਰ। ਨਾਨਕ ਰਚਨਾ ਪ੍ਰਭ ਰਚੀ ਬਹੁਵਿਦ ਅਨਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਸ਼ਟਪਦੀ। ਕਈ ਕੋਟ ਹੋਏ ਪੁਜਾਰੀ, ਕਈ ਕੋਟ ਆਚਾਰ ਵਿਵਹਾਰੀ, ਕਈ ਕੋਟ ਭਏ ਤੀਰਥ ਵਾਸੀ, ਕਈ ਕੋਟ ਬਨ ਭ੍ਰਮੇ ਉਦਾਸੀ, ਕਈ ਕੋਟ ਵੇਦ ਕੇ ਸਰੋਤੇ, ਕਈ ਕੋਟ ਤਪੀ ਸਰ ਹੋਤੇ, ਕਈ ਕੋਟ ਆਤਮ ਧਿਆਨ ਧਾਰੈ, ਕਈ ਕੋਟ ਕਬ ਕਾਬ ਵਿਚਾਰੈ, ਕਈ ਕੋਟ ਨਵ ਤਨ ਨਾਮ ਧਿਆਵੈ, ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕਾ ਅੰਤ ਨ ਪਾਵੈ, ਕਈ ਕੋਟ ਭਏ ਅਭਿਮਾਨੀ, ਕਈ ਕੋਟ ਅੰਧ ਅਗਿਆਨੀ, ਕਈ ਕੋਟ ਕਿਰਪਨ ਕਠੋਰ, ਕਈ ਕੋਟ ਅਭੇਗ ਆਤਮ ਨਿਕੋਰ, ਕਈ ਕੋਟ ਪਰ ਦਰਬ ਕਹਿਰੈ, ਕਈ ਕੋਟ ਪਰ ਦੁਖ ਨਾ ਕਰੈ, ਕਈ ਕੋਟ ਮਾਇਆ ਸ਼ਰਮ ਮਾਹੇ, ਕਈ ਕੋਟ ਪਰਦੇਸ ਪਰਮਾਹੇ, ਜਿਤ ਜਿਤ ਲਾਵੋ ਤਿਤ ਤਿਤ ਲਗਨਾ, ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੀ ਜਾਣੈ ਕਰਤਾ ਰਚਨਾ। ਕਈ ਕੋਟ ਸਿੱਧ ਜਤੀ ਜੋਗੀ, ਕਈ ਕੋਟ ਰਾਜੇ ਰਸ ਭੋਗੀ, ਕਈ ਕੋਟ ਪੰਖੀ ਸਰਪ ਉਪਾਏ, ਕਈ ਕੋਟ ਪਾਥਰ ਬਿਰਖ ਨਿਪ ਜਾਏ, ਕਈ ਕੋਟ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰ, ਕਈ ਕੋਟ ਦੇਸ ਭੂ ਮੰਡਲ, ਕਈ ਕੋਟ ਸਸੀਅਰ ਸੂਰ ਨਖਿਅਤਰ, ਕਈ ਕੋਟ ਦੇਵਦਾਨਵ ਇੰਦਰ ਸਿਰ ਛਤਰ, ਸਗਲ ਸਮੱਗਰੀ ਆਪਣੇ ਸੂਤ ਧਾਰੈ, ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਜਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਸ ਤਿਸ ਨੇ ਸਤਾਰੈ, ਕਈ ਕੋਟ ਰਾਜਸ ਤਾਮਸ ਸਾਤਕ, ਕਈ ਕੋਟ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਸਿਮਰਤ ਅਰਸਾਸਤ, ਕਈ ਕੋਟ ਕੀਏ ਰਤਨ ਸੰਬੰਧ, ਕਈ ਕੋਟ ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੰਤ, ਕਈ ਕੋਟ ਕੀਏ ਚਿਰ ਜੀਵੇ, ਕਈ ਕੋਟ ਗਿਰੀ ਮੇਰ ਸਵਰਣ ਥੀਵੇ, ਕਈ ਕੋਟ ਜਖਯ ਕਿੰਨਰ ਪਿਸਾਚ, ਕਈ ਕੋਟ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਸੂਕਰ ਮਿਰਗਾਚ, ਸਭ ਤੇ ਨਿਰੈ ਸਭ ਹੂੰ ਤੇ ਦੂਰ, ਨਾਨਕ ਆਪ ਅਲਿਪਤ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ, ਕਈ ਕੋਟ ਪਾਤਾਲ ਕੇ ਵਾਸੀ, ਕਈ ਕੋਟ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਨਿਵਾਸੀ, ਕਈ ਕੋਟ ਜਨਮੈ ਜੀਵੈ ਮਰੈ, ਕਈ ਕੋਟ ਬਹੁ ਜੋਨੇ ਫਿਰੈ, ਕਈ ਕੋਟ ਬੈਠਤ ਹੀ ਖਾਹੇ, ਕਈ ਕੋਟ ਘਾਲੈ ਥੱਕ ਪਾਹੇ, ਕਈ ਕੋਟ ਕੀਏ ਧਨਵੰਤ, ਕਈ ਕੋਟ ਮਾਇਆ ਮੈਂ ਚਿੰਤ, ਜਹਿ ਜਹਿ ਭਾਣਾ ਤਹਿ ਤਹਿ ਰਾਖੇ, ਨਾਨਕ ਸਭ ਕੇ ਸ਼ਿਵ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਹਾਥੇ, ਕਈ ਕੋਟ ਭਏ ਬੈਰਾਗੀ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੰਗ ਤਿਨ ਲਿਵ ਲਾਗੀ, ਕਈ ਕੋਟ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਖੋਜਨ ਤੇ ਆਤਮ ਮੈਂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਰਹਨ ਤੇ, ਕਈ ਕੋਟ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਸ, ਤਿਨ ਕੋ ਮਿਲਿਓ ਪ੍ਰਭ ਅਬਿਨਾਸ਼, ਕਈ ਕੋਟ ਮੰਗੈ ਸਤ ਸੰਗ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਤਿਨ ਲਾਗਾ ਰੰਗ, ਜਿਨ ਕੋ ਹੋਏ ਆਪ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਜਨ ਸਦਾ ਧਨ ਧਨ, ਕਈ ਕੋਟ ਖਾਣੀ ਅਰਖੰਡ, ਕਈ ਕੋਟ ਆਕਾਸ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ, ਕਈ ਕੋਟ ਹੋਏ ਅਵਤਾਰ, ਕਈ ਜੁਗਤ ਕੀਨੋ ਵਿਸਥਾਰ, ਕਈ ਬਾਰ ਪਸਰਿਓ ਪਸਾਰ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਏਕ ਏਕ ਓਂਕਾਰ, ਕਈ ਕੋਟ ਕੀਨੇ ਬਹੁ ਭਾਂਤ, ਪ੍ਰਭ ਤੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭ ਮਾਹੇ ਸਮਾਤ, ਤਾਕਾ ਅੰਤ ਨ ਜਾਣੈ ਕੋਇ, ਆਪੇ ਆਪ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ, ਕਈ ਕੋਟ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੇ ਦਾਸ, ਤਿਨ ਹੋਵਤ ਆਤਮ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਕਈ ਕੋਟ ਤੱਤ ਕੇ ਬੇਤੇ, ਸਦਾ ਨਿਹਾਰੈ ਏਕੂ ਨੇਤਰੇ, ਕਈ ਕੋਟ ਨਾਮ ਰਸ ਪੀਵੈ, ਅਮਰ ਭੈ ਸਦ ਸਦ ਹੀ ਜੀਵੈ, ਕਈ ਕੋਟ ਨਾਮ ਗੁਣ ਗਾਵੈ, ਆਤਮ ਰਸ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਸਮਾਵੈ, ਆਪਣੇ ਜਨ ਕੋ ਸਾਧ ਸਾਧ ਸੁਮਾਰੇ, ਨਾਨਕ ਓਏ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਸਲੋਕ, ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭ ਏਕ ਹੈ ਦੂਸਰ ਨਾਹੀ ਕੋਇ, ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਬਲਹਾਰਨ ਹੈ ਜਲ ਸਲ ਮਹੀਅਲ ਸੋਏ, ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਕਰਨੇ ਜੋਗ, ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਹੋਗ, ਖਿਨ ਮੈਂ ਥਾਪੂ ਥਾਪਨ ਹਾਰਾ, ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਕਿਛੁ ਪਾਰਾ ਵਾਰਾ, ਹੁਕਮੇ ਧਾਰ ਅਤਰ ਰਹਾਵੈ, ਹੁਕਮੇ ਉਪਜੈ ਹੁਕਮ ਸਮਾਵੈ, ਹੁਕਮੇ ਊਚ ਨੀਚ ਵਿਵਹਾਰ, ਹੁਕਮੇ ਅਨਕ ਰੰਗ ਪ੍ਰਕਾਰ, ਕਰ ਕਰ ਦੇਖੈ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ, ਨਾਨਕ ਸਭ ਮੈਂ ਰਹਿਆ ਸਮਾਈ, ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਮਨੁੱਖ ਗਤ ਪਾਵੈ, ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਪਾਥਰ ਤਰਾਵੈ, ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਬਿਨ ਸਾਸਤੇ ਰਾਖੈ, ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਹਰ ਗੁਣ ਭਾਖੈ, ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਪਤਿਤ ਉਧਾਰੈ, ਆਪ ਕਰੈ ਆਪਨ ਵਿਚਾਰੈ, ਦੋਹਾਂ ਸਿਰਿਆਂ ਕਾ ਆਪ ਸੁਆਮੀ, ਖੇਲੈ ਬਿਕਸੈ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ, ਜੋ ਭਾਵੈ ਸੋ ਕਾਰ ਕਰਾਵੈ, ਨਾਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਵਰ ਨਾ ਆਵੈ, ਕਹੋ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਕਿਆ ਹੋਇਆ ਵੈ, ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਾਵੈ, ਇਸ ਕੈ ਹਾਥ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਭ ਕਿਛੁ ਲੇ, ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰੇ, ਅਨਜਾਨਤ ਬਿਖਿਆ ਮੈਂ ਰਚੈ ਜੇ ਜਾਣਤ, ਆਪਣ ਆਪ ਬਚੈ ਭਰਮੈ ਭੂਲਾ ਦੈਤ ਸਤਾਵੈ, ਨਿਮਖ ਮਾਹੀ ਚਾਰ ਕੁੰਟ ਫਿਰੇ ਆਵੈ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸੇ ਆਪਣੀ ਭਗਤ ਦੇ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਜਨ ਨਾਮ ਮਿਲੇ, ਖਿਨ ਮੈਂ ਨੀਚ ਕੀਟ ਕਉ ਰਾਜ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ, ਜਾ ਕਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਛੂ ਨਾ ਆਵੈ, ਤਿਸ ਤਤਕਾਲ ਦੈ ਦਿਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵੈ,
जा कौ अपनी करै बखसीस, ताका लेखा न गन जगदीस। जियो पिंड सब तिसकी रास, घाट घाट पूर्ण ब्रह्म प्रगास। अपनी बणत आप बनाई, नानक जीवै देख बडाई। इसका बल नाही इस हाथ, करण करावन सर्ब को नाथ। आग्या कारी बपुरा जियो, जो तिस पावे सोई हो न थियो। कबहू ऊच नीच मैं बसै, कबहू सोग हर खरंग हसै। कबहू निंद चिंद ब्योहार, कबहू ऊब आकाश पयाल। कबहू बेता ब्रह्म विचार, नानक आप मिलावनहार। कबहू निरत करे बहु पांत, कबहू सोए रह दिन रात। कबहू महाक्रोध विकराल, कबहू सर्ब की हो तरवाल। कबहू होए बहै बड़ राजा, कबहू पेखारी नीच का साजा। कबहू आप कीरत मह आवै, कबहू भला भला कहावै। ज्यो प्रभ राखै तिवि रहै, गुर प्रसाद नानक सच कहै। कबहू होए पंडित करे बखियान, कबहू मोन धारी लावै ध्यान। कबहू तट तीरथ इसनान, कबहू सिद्ध साधिक मुख ज्ञान। कबहू कीट हस्त पतंग होए जिया, अनक जोन परमै परमिया। नाना रूप ज्यों स्वांगी दिखावै, ज्यों प्रभ पावै तिवै नचावै। ज्यो तिस पावै सोई होए, नानक दूजा अवर न कोए। कबहू साध संगत एह पावै, उस अस्थान ते बाहुर न आवै। अंतर होए ज्ञान प्रगास, उस अस्थान का नहीं विनाश। मन तन नाम रते एक रंग, सदा बसै पार ब्रह्म के संग। ज्यों जल मैं जल आए खटाना, त्यों ज्योति संग ज्योत समाना। मिट गए गवन पाए विश्राम, नानक प्रभ कै सतगुरबान। सलोक सुखी बसै मसकीनिया, आपने वार तले बड़े बड़े अहंकारिया। नानक गर्भ गले अष्टपदी, जिसके अंतर राज अभिमान। सो नरक पाती होवत सुवान, जो जाने मैं जोवनवंत। सो होवत बिष्टा का जंत, आपस को कर्मवंत कहावै। जन्म मरै बहु जोन भ्रमावै, तन भूम का जो करै कुमान। सो मूर्ख अंधा अज्ञान, कर कृपा जिस कै हृदय गरीबी बसावै। नानक इहां मुक्त आगै सुख पावै। धनवंता होए कर गरबावै, तृण समान काश संग ना जावै। बहु लस्कर मान को ऊपर करे आस, पल भीतर ताका होए विनाश। सब ते आप जानै बलवंत, खिन मैं होए जाए पसमंत। किसे न बतै आप अहंकारी, धर्म राय तिस करे खुआरी। गुर प्रसाद जाका मिटे अभिमान, सो जन नानक दरगै प्रवान। कोट कर्म करै हो तारे, श्रम पावै सगले बिरथारे। अनक तपस्या करे अहंकार, नरक सुर्ग फिर फिर अवतार। अनक जतन कर आत्म निंद्रवै, हर दरगै कहो कैसे गवै। आपस कौ जो भला कहावै, किसे भलाई निकट न आवै। सर्ब की रेन जा का मन होए, कहो नानक ताकि निर्मल सोए। जब लग जाने मुझ ते काश होए, तब इस कौ सुख नाही कोए। जब ए जाने मैं किश करता, तब लग गर्भ जोन मह फिरता। जब तार है को बैरी मीत, तब लग नेह चलना ही चीत। जब लग मोह मगन संग माए, तब लग धर्म राय दे सजाए। प्रभ कृपा ते बंधन टूटे, गुर प्रसाद नानक हों छूटे। सहस खटे लख को उठतावै, तृप्त न आवै माया पाछै पावै। अनक भोग बिख्या की करै, नह तृप्तावै खप खप मरै। बिना संतोख नहीं को राजै, सुपन मनोरथ ब्रथे सब काजै। नाम रंग सर्ब सुख होए, बड़भागी किसे प्राप्त होए। कारण करावण आपे आप, सदा सदा नानक हर जाप। करण करावन करने हार, इसके हाथ कहा विचार। जैसी दृष्ट करे तैसा होए, आपे आप प्रभ सोए। जो किश कीनो सो अपने रंग, सब ते दूर सबहु कै संग। बूझै देखै करै बबेक, आपे एक आपे अनेक। मरै न बिनसै आवै न जाए, नानक साध ही रहया समाए। आप उपदेसै समझै आप, आपे रचिया सब कै साथ। आप कीनो अपन बिसथार, सब काश उसका ओ करणहार।
उस ते भिन्न कहो किश होए थान थनंत्र एक सोए आपने चलित आप करने हार कौतक करे रंग अपार मन मह आप मन अपने माहे नानक कीमत कह न जाए सत सत सत प्रभ स्वामी गुर प्रसाद किने वख्यानी सच सच सच सब कीना कूट मधे किने बिरलै चीना भला भला भला तेरा रूप अत सुंदर अपार अनूप निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी घट घट सुनी श्रवण बखियाणी पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत नाम जपै नानक मन प्रीत सलोक संत सरण जो जन परै सो जन उदरण हार संत की निंदा नानका बहुर बहुर अवतार अष्टपदी संत कै दुखन आर जा कटै संत कै दुखन जमते नहीं छुटै संत कै दुखन सुख सब जाए संत कै दुखन नरक में पाए संत कै दुखन मत होए मलीन संत कै दुखन सो बाते हीन संत के हते को रखे न कोए संत कै दुखन थान भ्रष्ट होए संत कृपाल कृपा जे करै नानक संत संग निंदक पी तरै संत के दुखन ते मुख पवै संतन कै दुखन काग ज्यों लवै संतन कै दुखन सर्प ज्यों पाए संत कै दुखन त्रिगत ज्यों किन माए संतन कै दुखन तृष्णा मैं जलै संत कै दुखन सब को शलै संत कै दुखन तेज सब जाए संत कै दुखन नीच निचाए संत दुखी का थाओ को नाहे नानक संत पावै ता ओए पी गत पाहे संत का निंदक महातताई संत का निंदक खेन टिकन न पाई संत का निंदक महात्यारा संत का निंदक परमेश्वर मारा संत का निंदक राज ते हीन संत का निंदक दुखिया अरदीन संत के निंदक को सर्व रोग संत के निंदक को सदा बिजोग संत की निंदा दुख मैं दुख नानक संत पावै ता उसका भी होए मोख संत का दुखी सदा अपवित संत का दुखी किसे का नहीं मित संत के दुखी को डान लागै संत के दुखी को सब त्यागै संत का दुखी महा अहंकारी संत का दुखी सदा विकारी संत का दुखी जन्मै मरै संत की दुख ना सुख ते टरै संत के दुखी को नाही ठाओ नानक संत पावै तां लै मिलाए संत का दुखी अद बीच ते टूटै संत का दुखी कितै काज ना पहुँचै संत के दुखी को उद्यान प्रमाइयै संत का दुखी उजड़ पाइयै संत का दुखी यंत्र ते थोथा ज्यों सास बिना मृत की लोथा संत के दुखी की जड़ किश नाहे अपन बीज आपे ही खाए संत के दुखी को अवर न रखन हार नानक संत पावै तां लै उबार संत का दुखी इउं बिल लाए ज्यों जल बिहून मछुड़ी तड़फड़ाए संत का दुखी भूखा नहीं राजा ज्यों पावक ईंधन नहीं तरपै संत का दुखी छुटे अकेला ज्यों गुआड़ तिल खेत माहे दोहेला संत का दुखी धर्म ते रहत संत का दुखी साध मिथ्या कहत किरत निंदक का तुर ही पया नानक जो तिस पावै सोई थिया संत का दुखी बिगड़ रूप हुए जाए संत के दुखी को दरगाह मिले सजाए संत का दुखी सदा सहकाइये संत का दुखी ना मरै ना जीवाइये संत के दुखी की पूजै ना आसा संत का दुखी उठ चले निराशा संत कै दुख न सृष्टे कोई जैसा पावै तैसा कोई होए पया किरत न मिटै कोई नानक जाने सच्चा सोए सब घट तिसके ओ करने हार सदा सदा तिस को नमस्कार प्रभ की उस्तत करहु दिन रात तिसे त्या वह सास गिरास सब काश वरतै तिसका किया जैसा करे तैसा कूथिया अपना खेल आप करने हार दूसर कौन कहे विचार जिसनु कृपा करै तिस आपन नाम दे बड़ भागी नानक जन से सलोक तज हो सियानप सुरजनाओ सिमरो हर हर राय एक आस हर मन रखो नानक दुख परम पह जाए अष्टपदी मानुक की टेक वृथि सब जान देवन को एक है भगवान जिसके दिए रहे अघाए बहुर न तृष्णा लाग आए मारे रख है एको आप मानुक कै किश नाही हाथ तिसका हुक्म बूझ सुख होए तिसका नाम रख कंठ परोए सिमर सिमर सिमर प्रभ सोए नानक बेगन न लागै कोए
पुस्तत मन मैं कर निरंकार, कर मन मेरे सत व्यवहार। निर्मल रसना अमृत पियो, सदा सुहेला कर लेह जियो। नैनो पेखो ठाकुर का रंग, साध संग बिन सह सब संग। चरण चलो मार्ग गोबिंद, मिटे पाप जपिए हर बिंद। कर हर कर्म श्रवण हर कथा, हर दरगह नानक ऊजल मथा। बड़ भागी ते जन जग माहे, सदा सदा हर के गुण गाहे। राम नाम जो करह विचार, से धनवंत गनी संसार। मान तान मुख बोले हर मुखी, सदा सदा जानो ते सुखी। एको एको एक पछाने, एतो उत कियो सो जी जाने। नाम संग जिसका मन मान्या, नानक तिन्ह निरंजन जान्या। गुरप्रसाद अपन आप सुज है, तिसकी जानो तृष्णा बुझ है। साध संग हर हर जस कहत, सर्व रोग त्यो हर जन रहत। अन दिन कीर्तन केवल वखियान, ग्रस्त मैं सोई निर्वाण। एक ऊपर जिस जन की आसा, तिसकी कटिए जम की फासा। पार ब्रह्म की जिस मन भूख, नानक तिस है न लागे दुख। जिस कौ हर प्रभ मन चित आवै, सो संत सुहेला नहीं डुलावै। जिस प्रभे अपना कृपा करै, सो सेवक कहो किस ते डरै। जैसा सा तैसा दृष्टाया, आपो ने कार्ज में आप समाया। सोधत सोधत सोधत सीजिया, गुरप्रसाद तत सब बूजिया। जब देखो तब सब किश मूल, नानक सो सूखम सोई असथूल। नह किश जन्मै नह किश मरै, आपन चले तो आप ही करै। आवन जावन दृष्ट आन दृष्ट, आज्ञाकारी धारी सब श्रेष्ठ। आपे आप सगल मैं आप, अनक जुगत रच थाप उथाप। अभिनाशी नाही किश खंड, धारण धार रहो ब्रह्मांड। अलख अभिव पुरख प्रताप, आप जपाए त नानक जाप। जिन प्रभ जाता सो सुभावंत, सगल संसार उदरै तिन मंत। प्रभ के सेवक सगल उधारण, प्रभ के सेवक दुख बिसारण। आपे मेल लय कृपाल, गुर का शब्द जाप पय निहाल। उनकी सेवा सोई लागै, जिसनु कृपा करै बड़ भागै। नाम जपत पावै विश्राम, नानक तिन पुरख कौ उत्तम करमान। जो किश करै सो प्रभ कै रंग, सदा सदा बसै हर संग। सह सुभाए होवै सो होए, करणै हार पछाणै सोए। प्रभ का किया जन मीठ लगाना, जैसा सा तैसा दृष्टाना। जिस ते उपजे तिस माहे समाए, ओए सुख निधान उन्हूं बन आए। आपस को आप दिनो मान, नानक प्रभ जन एको जान। सलोक सर्ब कला भरपूर प्रभ, बिरथा जानन हार। जाकै सिमरन उधरियै, नानक तिस बलहार। अष्टपदी टूटी गांडन हार गोपाल, सर्ब जियां आपे प्रतपाल। सगल की चिंता जिस मन माहे, तिस ते बिरथा कोई नाहे। रे मन मेरे सदा हर जाप, अविनाशी प्रभु आपे आप। अपन किया कशु न होए, जे सौ प्राणी लोचै कोए। तिस बिन नाही तेरा किश काम, गत नानक जाप एक हर नाम। रूपवंत होए नाही मोह है, प्रभ की जोत सगल घट सो है। धनवंता होए क्या को गर्भ, जन सब किश तिस का दिया दरबै। अत सूरा जे को कहावै, प्रभ की कला बिना कहतावै। जे को हुए बाहे दातार, तिस देन हर जन गवार। जिस गुर प्रसाद टूटे हों रोग, नानक सो जन सदा आरोग। ज्यों मंत्र को थामे थमन, त्यों गुर का शब्द मन है अस थमन। ज्यों पाखाण नाव चाड़ तरै, प्राणी गुर चरण लागत निस तरै। ज्यों अंधकार दीपक प्रगास, गुर दर्शन देख मन होए बिगास। ज्यों महा उद्यान मैं मार्ग पावै, त्यों साधु संग मेल। जोत प्रगटावै तिन संतन की बाशौ तूर, नानक की हर लोचा पूर। मन मूरख काहे बिल लाइयै, पुरब लिखे का लिखिया पाइयै। दुख सुख प्रभ देवन हार, अवर त्याग तू ते सहज तार। जो काश करे सोई सुख मान, भूला काहे फिरया जान। कौन बस आई तेरा संग, लापट रहे ओ रस लोभी पतंग। राम नाम जप हिरदे माहे, नानक पात सेती घर जाहे।
ਜਿਸ ਵੱਖਰ ਕੋ ਲੈਨ ਤੂੰ ਆਇਆ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੰਤਨ ਘਰ ਪਾਇਆ, ਤਜ ਅਭਿਮਾਨ ਲੇਹੋ ਮਨ ਮੂਲ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਮੈਂ ਤੋਲ, ਲਾਦ ਕੇ ਬਸੰਤੈ ਸੰਗਚਾਲ, ਅਵਰ ਤਿਆਗ ਵਿਖਿਆ ਜੰਜਾਲ, ਧਨ ਧਨ ਕਹੇ ਸਭ ਕੋਏ, ਮੁਖ ਊਜਲ ਹਰ ਦਰ ਗਹਿ ਸੋਏ, ਇਹੋ ਵਾਪਾਰ ਵਿਰਲਾ ਵਾਪਾਰ, ਨਾਨਕ ਤਾਕੈ ਸਾਧ ਬਲ ਹਾਰੈ, ਚਰਨ ਸਾਧ ਕੇ ਧੋਏ ਧੋਏ ਪੀਓ, ਅਰਪ ਸਾਧ ਕਹੋ ਆਪਣਾ ਜੀਓ, ਸਾਧ ਕੀ ਧੂਰ ਕਰਹੋ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਸਾਧ ਉਪਰ ਜਾਈਏ ਕੁਰਬਾਨ, ਸਾਧ ਸੇਵਾ ਵਡਭਾਗੀ ਪਾਈਐ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਗਾਈਐ, ਅਨਕ ਬਿਘਨ ਤੇ ਸਾਧੂ ਰੱਖੈ, ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਚਾਖੈ, ਓਟ ਗਹੀ ਸੰਤੈ ਦਰ ਆਇਆ, ਸਰਬ ਸੂਖ ਨਾਨਕ ਤੇ ਪਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਕਹੋ।

कथना कथि न आवे टूट, काथ कथ कथि कोटि कोट कोट, देदा दे ले दे तक पाहे, जुगा जुगंतर खाही खाही, हुक्मे हुक्म चलाए राहु, नानक विगसै वे प्रवाहु, साचा साहिब साच नाए, पाख्या पाओ अपारु, आख है।

आपे आप निरंजन सोए। जिन सेविया तिन पाया मानु, नानक गावी है गुणी निदान। गावी है सुनिए मन रखिए भाउ, दुख पर हर सुख कर लै जाए। गुरमुख नादं गुरमुख वेदं, गुरमुख रहा समाई। गुरीसर गुर गोरख बरमा, गुर पार्वती माई। जे हो जाना आखा नाही, कहना कथन न जाई। गुरा एक देह बुझाई, सबना जिया का एक दाता। सो मैं विसर न जाई, तीरथ नावा जे तिस पावा। विण भाणे के नाए करी, जेती सिर ठो पाई वेखा। विण कर्मा के मिले लई, मत विच रतन जवाहर माणिक। जे एक गुर की सिख सुनी, गुरा एक देह बुझाई। सबना जिया का एक दाता, सो मैं विसर न जाई। जे जुग चारे आर जा, होरज सुनी होए। नवा खंडा विच जानी है, नाल चले सब कोए। चंगा ना और खाए कै, जस कीरत जगले। जे तिस नदर न आवई, ता वात न पुछे के। कीटा अंदर कीट कर, दोषी दोष धरे। नानक निर्गुण गुण करे, गुणवंतिया गुण दे। तेहा कोई न सुजई, जे तिस गुण कोई करे। सुने सिद्ध पीर सुरनाथ, सुने धरत धवल आकाश। सुने दीप लो पाताल, सुने पोहे न सकै काल। नानक भगता।

जुगत तन भेद सुने सास्त सिमृत वेद नानक भगता सदा विगास सुने दुख पाप का नाश सुने सत संतोख ज्ञान सुने अठसठ का स्नान सुने पढ़ पढ़ पावह मान सुने लागे सहज ध्यान नानक भगता सदा विगास सुने दुख पाप का ना सुने सरा गुणा के गाह सुने शेख पीर पातशाह सुने

मन्ने मन कोई मन्ने मार्ग ठाक न पाए मन्ने पातशो प्रगट जाए मन्ने मग न चले पंथ मन्ने धर्म सेती संबंध ऐसा नाम निरंजन हुए जे को मन जाने मन कोई।

आओ एको को आओ तिस्ते हुए लख दरियाओ कुदरत कवन कहा विचार वारिया ना जावा एक वार जो तुद पावै साई भली कार तू सदा सलामत निरंकार असंख जप असंख पाओ असंख पूजा असंख तप ताओ असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रह उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार असंख सूर मोह पख सार असंख मोन लिव लाए तार कुदरत कवन कहा विचार वारिया ना जावा एक वार जो तुद पावै साई भली कार तू सदा सलामत निरंकार असंख मूरख अंध घोर असंख चोर हराम खोर असंख अमर कर जाहे जोर असंख गल वड हत्या कुमाहे असंख पापी पाप कर जाहे असंख कूड़ियार कूड़े फिराहे असंख मलेश मल पख खाहे असंख निंदक सिर कर है पार नानक नीच कह विचार वारिया ना जावा एक वार जो तुद पावै साई भली कार तू सदा सलामत निरंकार असंख नाव असंख थाव अगम अगम असंख लो असंख कह सिर भार होए अखरी नाम अखरी सा लाह अखरी ज्ञान गीत गुण गाह अखरी लिखण बोलन बाण अखरा सिर संजोग वखाण जिन एह लिखे ते सिर नाहे जि फरमाए तिव ते पाहे जेता कीता तेता नाओ विण नावै नाही को थाओ कुदरत कवन कहा विचार वारिया ना जावा एक वार जो तुद पावै साई भली कार तू सदा सलामत निरंकार भरिए हाथ पैर तन दे पानी धोतै उतर सके मूत पलीती कपड़ होए दे साबून लइए ओ धोए भरिए मत पापा कै संग ओह धोपै नावै कै रंग पुन्नी पापी आखण नाही कर कर करना लिख लै जाओ आपे बीज आपे ही खाहो नानक हुक्मी आवो जाहो तीर्थ तप दया दत दान जे को पावै तिलका मान सुनिया मनिया मन कीता पाओ अंतरगत तीर्थ मल नाओ सब गुण तेरे मैं नाही कोए विन गुण कीते भगत न होए स्वस्थ आत बाणी बरमाओ सत सुहाण सदा मन चाओ कवन सुवेला वक्त कवन कवन थित कवन वार कवन सिरुति माह कवन जित हुआ आकार वेल न पाया पंडती जे हुवै लेख पुराण वक्त न पायो कादिया जे लिख

जाने सुई किव करे आखा किव सालाही क्यों वरनी किव जाना नानक आखण सब को आखे इक दू इक सियाणा।

नमो शस्त्र पाणे नमो अस्त्र माणे नमो परम ज्ञाता नमो लोक माता अपेखी अपरमी अपोगी अपुगते नमो जोग जोगे संग परम जुगते नमो नित नारायणे क्रूर कर्मे नमो प्रेत प्रे देवे सुधर्मे नमो रोग हर्ता नमो राग रूपे नमो साह सांग नमो पूप पूपे नमो दान दाने नमो मान माने नमो रोग रोगे नमस्तंग स्नान नमो मंत्र मंत्रंग नमो जंत्र जंत्रंग नमो इष्ट इष्टे नमो तंत्र तंत्रंग सदा सचदानंद सर्वं परनासी अनुपे अरूपे समस्तुल निवासी सदा सिद्धा बुद्धा प्रिद करता अदो उर्द अर्दं अगं ओगहरता परम परम परमेश्वरं प्रोचपालं सदा सर्वदा सिद्धदाता दयालं अचेदी अपेदी अनामंग कामं समस्तो पराजी समस्तस्ततामं तेरा जो चाचरी छंद जले हैं तले हैं अपीत हैं अपे हैं प्रभु हैं अजू हैं अदेश हैं अपेश हैं पुजंग प्रया छंद अगाते अगाते अनंदी स्वरूपे नमो सर्वमान्ये समस्ती निदाने नमस्त्वं निर्णाते नमस्त्वं परमाथे नमस्त्वंग गंजे नमस्त्वंग पंजे नमस्त्वंग काले नमस्त्वंग पाले नमो सर्वदेशे नमो सर्वपेशे नमो राज राजे नमो साज साजे नमो साह साहे नमो माह माहे नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोख रोके नमो शोक शोके नमो सर्वरोगे नमो सर्वभोगे नमो सर्वजीतं नमो सर्वपीतं नमो सर्वज्ञानं नमो परमतानं नमो सर्वमंत्रं नमो सर्वजंत्रं नमो सर्वदृश्यं नमो सर्वकृशं नमो सर्वरंगे त्रिपंगे अनंगे नमो जीव जीवं नमो बीज बीजे अखिचे अपिचे समस्तं प्रसिजे कृपालं स्वरूपे कुकर्मं परनासी सदा सर्वदारिद सिद्धं निवासी चरपड़ चंत्व प्रसाद अमृत कर्मे अमृत धर्मे अखल जोगे अचल भोगे अचल राजे अटल साजे अखल धर्मंग लख कर्मंग सर्वंग दाता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग पाने सर्वंग माने सर्वंग प्राणं सर्वंग त्राणं सर्वंग भुगता सर्वंग जुगता सर्वंग देवं सर्वंग पेवं सर्वंग काले सर्वंग पाले रुवाल छंत्व प्रसाद आद रूपनाद मूरत जौन पुरख पार सर्वमान त्रिमान देव पेवाद उदार सर्वपालक सर्वकालक सर्वकोपन काल जत्र तत्र विराज ही अवतूत रूप प्रसाद नाम ठाम न जात जाक रूप रंग न रेक आद पुरख उदार मूरत जौन आद अशेक देश और न पेश जाकर रूप रेख न राग जत्र तत्र दिशा विशा हुए फैले अनुराग नाम काम बहीन पेख ताम नह जाहे सर्वमान सर्वत्र मान सदैव मान तताहे एक मूर्त अनेक दर्शन कीन रूप अनेक खेल खेला खेल खेल अनंत को फिर एक देव

मरण बहीन, चक्र बकर फिरया चतर चक मानी पुरतीन, लोक चौदह के बिकै जग जापी जह जाप, आद देवनाद मूरत थाप्यो सबै जी था, परम रूप नीत मूरत पूर्ण पुरख अपार, सर्व विश्व रच्यो स्वयं भव गणन भंजन हार, कालहीन कला संयुक्त अकाल पुरख देश, धर्म धाम सो भरम रहत अभूत लख अपेसु, अंग राग न रंग जाकै जात पात न नाम, गर्भ गंजन दुष्ट भंजन मुख दाय कामु, आप रूप अमीक अनुस्त ते पुरख अवतूत, गर्भ गंजन सर्व भंजन आद रूप असूत, अंगहीन अभंग नातम एक पुरख अपार, सर्व लायक सर्व कायक सर्व को प्रतपार, सर्वगंता सर्वहंता सर्व ते अनपेक, सर्व शास्त्र ना जान नहीं जे रूप रंग रेक, परम वेद पुराण जा कह नित भागत नित, कोट सिमृत प्राण शास्त्र नया वही वह चित, मत पार चंत्व प्रसाद गुणगन उदार महिमा अपार, असन भंग उपमा नंग अनुभव प्रकाश, निश्चिन नाश आजान बाहु साहन साहु, राजन राज पानन पान, देवन देव उपमा महान, इंद्रान इंद्र बालान बाल, रंकान रंक कालान काल, अनभूत अंग अभा अपांग गत मित अपार, गुणगन

सदार मुनगन प्रणाम निरपय निकाम अद्भुत प्रचंड मितगत अखंड आलिश्य कर्म आदृश्य धर्म सर्वा प्रनाढ्य अंड बाढ़ चाचरी छंत्व प्रसाद गोविंदे मुकंदे उदारे अपारे हरियं करियं निरनामे अकामे पुजंग प्रया छंद चतर चक्र करता चतर चक्र हरता चतर चक्र दानी चतर चक्र जानी चतर चक्र वर्ती चतर चक्र परती चतर चक्र पाले चतर चक्र काले चतर चक्र पासे चतर चक्र वासे चतर चक्र माने चतर चक्र दान्य चाचरी छंद न सत्रह न मित्र न परमंग न पित्र न कर्मंग न काय अजन मंग जाये न चित्र न मित्र परे है पवित्र प्रतिशय अधिशय अदृश्य अकृश्य भगवती छंद्व प्रसाद कथते के आ छिज देशय के आ भिज भेसै के आ गंज करमै के आ भंज भरमै के आ भिज लोकै के आ दित सोकै के अवधूत वरणै के विभूत करनै के राजंग प्रभा है के धर्मंग तुजा है के आ सुख वरणै के सर्वा भरणै के जगतं कृति है के छत्रंग छत्री है के वर्मंग स्वरूपै के अनुभव अनुपै के आद अधिवै के आप अपेव है के चित्रंग बहीन के कह अधीन के रोजी रजा कह रही मैं रिहा कह के पाक व्यय वह के गय भूल गय वह के अफूल गुनाह है के साहन साह के कारण कुनिंद के रोजी देहांद है के राजक रही मैं के कर्मंग करी मैं के सर्वंग कली है के सर्वंग दली है के सर्वत्र मान्य है के सर्वत्र दान्य है के सर्वत्र गौण है के सर्वत्र पौण है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र भेष है के सर्वत्र राज्य है के सर्वत्र साज्य है के सर्वत्र दीन है के सर्वत्र लीन है के सर्वत्र जाहु के सर्वत्र पाहु के सर्वत्र देश है के सर्वत्र भेष है के सर्वत्र काल है के सर्वत्र पाल है के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र भेखी के सर्वत्र भेखी के सर्वत्र काज है के सर्वत्र राज्य है के सर्वत्र सुख है के सर्वत्र भूख है के सर्वत्र त्राण है के सर्वत्र प्राण है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र भेष है के सर्वत्र मान्य है सदैव प्रधान है के सर्वत्र जाप्य है के सर्वत्र थाप्य है के सर्वत्र भान है के सर्वत्र मान है के सर्वत्र इंद्र है के सर्वत्र चंद्र है के सर्वं कलिम है के परमं फहीम है के अकल अलम है के साहिब कलम है के हुस्नल वजू है तमामुल रुजू है हमेशल सलाम सली खत्म दाम गनीमुल सिकस्त है गरीबुल परस्त है बिलंदुल मकान है जमीनुल जमान है तमीजुल तमाम रुजुअल निदान है हरीफुल अजीम रजा की यकीन है अनेकल तरंग है अपेद है अपंग है अजीजुल निवाज है गनीमुल खिराज है निरुक्त स्वरूप है त्रिमुक्त विभूत है प्रभुक्त प्रभा है सुजुगत सुदा है सदैव स्वरूप है अपेदी अनूप है समस्तो पराज है सदा सर्वसाज है समस्तो सलाम है सदैव काम है निर्बाध स्वरूप है अगाध है अनूप है ओंगाद रूप है अनाथ स्वरूप है अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे त्रिवर्गं त्रिबाधे अगंजे अगाधे सुभंग सर्वभागे सुसर्वानुरागे त्रिभुगत स्वरूप है अचिज है अचूत है कि नरकंग परनाश है पृथ्वल प्रवास है निरुक्त प्रभा है सदैव सदा है विभुगत स्वरूप है प्रयुक्त अनूप है निरुक्त सदा है विभुगत प्रभा है अनुक्त स्वरूप है प्रयुक्त अनूप है चाचरी छंद अपंग है अनंग है अपेख है अलेख है अपरम है अकर्म है अनाद है जुगाद है अजय है अभय है अभूत है अतूत है अनाश है उदास है अतंध है अबंध है अपगत है विरक्त है अनाश है प्रकाश है निश्चिंत है सुनित है अलिख

प्रसाद सर्वंग हंता सर्वंग गंता सर्वंग ख्याता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग हर्ता सर्वंग कर्ता सर्वंग प्राणं सर्वंग त्राणं सर्वंग कर्मं सर्वंग धर्मं सर्वंग जुगता सर्वंग मुक्ता रसावल छंत्व प्रसाद नमो नरक नासे स दैवं प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अपंगं विभूते परमात्म परमाते सदा सर्व साथे अगाध स्वरूपे निर्बाध विभूते अनंगी अनामी त्रिपंगी त्रिकामे निरपंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे न पुत्रे न पुत्रे न सत्रे न मित्रे न ताते न माते न जाते न पाते निरसाकं शरीक है अमितो अमीक है सदैवं प्रभा है अजय है अजा है भगवती छंत्व प्रसाद के जाहर जहूर है के हाजर हजूर है हमेशुल सलाम है समस्तुल कलाम है के साहिब दिमाग है के हुसनल चिराग है के कामल करीम है के राजक रहीम है के रोजी देहांद है के राजक रहिंद है करीमुल कमाल है के हुसनल जमाल है गनीमुल खिराज है गरीबुल निवाज है हरीफुल सिकान है हिरासल फिकान है कलंकंक परनाश है समस्तुल निवास है अगंजुल गनीम है रजायक रहीम है समस्तुल जुबा है के साहिब किरा है के नरकंक परनाश है बहस्तुल निवास है के सर्वुल गवन है हमेशुल रवान है तमामुल तमीज है समस्तुल अजीज है परम परमीश है समस्तुल अदीश है आदेशुल अलीख है हमेशुल अपेक है जमीनुल जमा है अमीकुल इमा है करीमुल कमाल है के जरूरत जमाल है कि अचलंग प्रकाश है कि अमितो सुबास है कि अजब स्वरूप है कि मितो विभूत है कि अमितो पसा है कि आत्म प्रभा है कि अचलंग अनंग है कि मितो अपांग है मद पार छंत्व प्रसाद मुनमन प्रणाम गुनगन मुदाम अरबर अगंज हर नर परपंज अनगन प्रणाम मुनमन सलाम हर नर अखंड बर नर अमंड अनपवनाश मुनमन प्रकाश गुनगन प्रणाम जल तल मुदाम मंचिज अंग आसन अपांग उपमा अपार गतमित उदार जल थल अमंड दिस विस अपांड जल थल महंत दिस विस बेअंत अनपवनाश त्रितर तुरास आजान बाहु इक्कै सदाहु ओंकाराद कथनी अनाद खलखंड खयाल गुरबर अकाल कर कर प्रणाम चित चरण नाम अनछिज गात अजिज ना बात अनचंज गात अनरंज बात अनटट भंडार अनडट अपार आडीठ धर्म अत ठीठ कर्म अनबरन अनंत दाता महंत हर बोल मना छंतवा प्रसाद करुणालया है अरकालया है कलखंडन है महमंडन है जगतेश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्ववारण है त्रित के तरण है जग के करण है मन मान्य है जग जान्य है सर्वंग पर है सर्वंग कर है सर्वपास्य है सर्वनाश्य है करुणा कर है विश्वम पर है सर्वेश्वर है जगतेश्वर है ब्रह्मंड से कलखंड से पर ते पर है करुणा कर है अजपा जप है अथपा थप है अकृता कृत है अमृता मृत है अमृता मृत है करुणा कृत है अकृता कृत है धरणी त्रित है अमृतेश्वर है परमेश्वर है अकृता कृत है अमृता मृत है अजपा कृत है अमृता मृत है नरनायक है खलकायक है विश्वम पर है कुरुणालय है निपनायक है सर्पायक है पावभंजन है अरगंजन है रिपतापन है जप जापन है अकलंकृत है सर्वाकृत है कर्ता कर है हरता हर है परमात्म है सर्वात्म है आत्म बस है जस के जस है भुजंग प्रया छंद नमो सूर्य सूर्ये नमो चंद्र चंद्रे नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्रे नमो अंधकारे नमो तेज तेजे नमो बृंद बृंदे नमो बीज बीजे नमो रासं तामसं शांत रूपे नमो परम तत्तंग तत्तंग स्वरूपे नमो योग योगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने नमो युद्ध युद्धे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो भोज भोजे नमो पान पाने नमो कलह कर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्र इंद्रे अनादंग विपूते कलंकार रूपे अलंकार अलंके नमो वास आसे नमो बांक बंके
अपंगी स्वरूपे अनंगी अनामी त्रिपंगी त्रिकाले अनंगी अकामे कचरी चंद अजय अलय अपय अवय अपू अजू अनास कास गंज पंज लख पक अकाल दयाल अलेख पेख नाम काम गाह अठाह नाथे परमाते अजूनी अमोनी नराग नरंगे नरूपे नरेखे अकर्मंग परमंग गंजे अलेखे भुजंग प्रया चंद नमस्तुल परनामे समस्तुल परनासी अगंजुल नामे समस्तुल निवासी निरकामंग विपूते समस्तुल स्वरूपे कुकर्मंग परनासी सुधर्मंग विपूते सदा सचिदानंद सत्रंग परनासी करिमुल कुनिंदा समस्तुल निवासी अजाय विपूते गजाय गनिमे हरियं करियं करिमुल रहिमे चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुगते सोयं भव सुभं सर्वदा सर्वजुगते

पूरे गुरते जानी। सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहया पर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे। सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहया पर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

श्री अमृतसर साहिब जी के दर्शन स्नान चौकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी वाहिगुरु। सिखां दा मन नीवा मत उची मत पत दई राखे आप वाहिगुरु। हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सहाई दतार जीओ। श्री ननकाणा साहिब ते होर गुरुद्वारे गुरधाम जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया है खुले दर्शन दीदार सेवा संभाल दा दान खालसा जी नूं बख्शिश करो। हे निमाणिया दे मान निताणिया दे तान नियोटियां दी ओट सच्चे पिता अकाल पुरख वाहिगुरु। दसों पातशाह की आत्मक जोत साहिब सतगुरु धन गुरु ग्रंथ साहिब गरीब नवाज सतगुरु जी आप जी ने अपार रहमत बख्शिश कीती अमृत वेले दे जागने बख्शे अमृत वेले पावन पवित्र तख्तां ते प्रकाशमान हो करके दर आईया संगतां नूं दर्शन दीदार बख्शिश कीते। आप जी का कोटान कोट शुकराना सतगुरु जी आप जी की कृपा सदका पावन हजूरी विच दीवान सजे सजे दीवाना अंदर अमृतमय बाणी श्री सुखमनी साहिब जी दे पाठ नित निम बाणिया दे पाठ होए अगाध बोध बाणी पढ़दियां हुईयां बेअंत भुलां दी खिमा करनी सिर ते मेर भरिया हथ रख के बाणी शुद्ध ते स्पष्ट पढ़न सुनन विचारन दी दात प्रदान करनी। सतगुरु जी अमृत वेले बेअंत संगतां ने आप जी के पावन दर घर दियां हाजरियां भरियां भेटावां अर्पण कीतियां कृपा करो समूह संगत दियां हाजरियां भेटावां दर प्रवान करनियां सबना नूं दरों घरों नामदान गुरसिक्खी जीवन चढ़दी कला बख्शिश करके नवाजना किरत कमाइयां विच वाधे पाउणे घरां परिवारां विच सुख वरताउणी बच्चियां दे सिर ते मेल भरिया हथ रखना गुरसिक्खी दी दात देश कौम दा प्यार बख्शिश करना बेअंत संगतां वल्लों मीडिये दे माध्यम राहीं हाजरियां भरियां गईयां सेवावां भेजियां गईयां गुरमत अनुसार सबना दियां मनोकामना मनोभावना संपूर्ण करनियां संगतां वल्लों गुरु के लंगरां विच तन मन धन दे नाल सेवावां कीतियां जा रहियां आप जी ने थाएं पाउणियां सबना नूं चढ़दी कला बख्शिश करके नवाजना सतगुरु जी अपने सेवादार टहलीए सिंघां दे सिर ते मेहर भरिया हथ रखना काम क्रोध लो मोहंकार तो बचा करके भावना सहित दर घर दी सेवा दे योग कर लेना हर मैदान फतेह बख्शिश करनी सदा अंग संग वर्तना गरीब नवाज सच्चे पातशाह जीओ। आप जी के हजूर अरदास बेनती है दर घर दे प्रीतवाना वालों अपने बच्चे काका अनेक सिंह दे जन्म दिहाड़े दी खुशी नूं मुख रखदे हां सतगुरु जीओ। आप जी के चरण कमलां विखे अरदास बेनती जुड़ी है गरीब नवाज आप जी ने कृपा करनी काका अनेक सिंह दे सिर ते मेहर भरिया हथ रखना लम्मी आरबला उच्च विद्या दी दात गुरसिक्खी वाला जीवन सच्चा सुच्चा जीवन बख्शिश करके नवाजना परिवार दे सिर ते मेहर भरिया हथ रखना बेअंत माया अरदास भेटा एक खजाने भरपूर करने सबना नूं चढ़दियां कला बख्शिश करके नवाजना गरीब नवाज बख्शिश कीते भंडारियां विचों कड़ा प्रसाद दी देग हाजिर है दर प्रवान होवे प्रवान होया प्रसाद संगत विच वरते कृपा करो पावन पवित्र हुक्म बख्शो जी हुक्म ते चलन दी मत बुद्ध प्रदान करो अगले दीवान सजाउण दी आग्या होवे सेई प्यारे में जिन्ना मिलिया आप जी का नाम चिते आवै नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

नित हृदय रखा संभालू, तुमरी शरण तुम्हारी आशा, तुम ही सज्जन सुहेले, राखो राखन।

0: जो जो फेर बटा गया नहीं पूछे ताहे सात जोर संतोख का धर्म गिरत हुआ उतरा तेरा जितने का जोर गिरत हुआ हो द्वा पर तपे का सद गिरत हुआ हो काल जुरत अगन का उड़ गिरत हुआ महला पहला
1: साम कहे सितंबर स्वामी।

पौड़ी चित अंदर सबको वेख नगरीट चलाएगा आपे देवनी आई आपे कर्म कराएगा वटो वटाउट मेदनी सिरा सिर तंदे लाएगा।

पशियार पर न सूज सगल पवन के नायका। एक शैन दर्श दखाए जी मल्लन पाई मत माधवा।

तक तुमरी कृपा में सुख कोई न जाने तुमरा ऊंचे ते चाप कुवंत सगल समग्री तुमरे तुमते हो ऐसो तुमरी गत मित तुम्हें

जगत जलंदा रख ले अपनी कृपा तार, जित द्वारे उबरे तित लेहु उबार। सतगुरु

संता संगत मिल रहा ता सच लगे प्यार, सच सलाही सच मन दर सच्चे सच्यार, गुरपूरे पूरी मत है एहनिस नाम त्याए, हौ मैं मेरा वड रोग है विचों ठाक रहाए, गुरसाला ही अपना निव निव लागा पाए, तन मन सौपी आगै धरी विच हो आप गवाए, खिंचो तान विगुची है एक स्यों लिव लाए, हौ मैं मेरा छड़ तू ता सच रह सुमाए, सतगुर नौ मिले

काल। मन का तोसा हर नाम है, हिरदय रखो संभाल। एहो खर्च अखुट है, गुरमुख निभ है नाल। ए मन मूल हो भुलिया, जस है पत गवाए। एहो जगत मोहे दूजै व्यापिया, गुरमति सच त्याए। हर की कीमत ना पवै, हर जस लिखण ना जाए। गुर कै शब्द मन तन रपै, हर स्यों

जन नानक हर आराध्या गुर चरणी चित लाय राग सूही अष्टपदिया महल्ला चौथा घर दूजा।

रैन दिन सुगुर चरण आराधी, दया करहो मेरे साई। नानक काजियो पिंड गुरु है, गुरमिल तृप्त अगाही। नानक का

मन है व्यापत अनिक तरंगा, मेरे मन अगम अगोचर कत पाइए पूरन परमेसर रहाओ। बोह मगन मह रहा व्यापे, अत तृष्णा कबहू नहीं त्रापे, बसै क्रोध शरीर चंडारा, अज्ञान न सूझै महागुबारा, प्रमत व्यापत जरे किवारा, जान न पाइए प्रभ दरबारा, आसा अंदेशा बंद पुराना, मेहर न पावे फिरत बेगाना, सगल ब्याद कै वस कर दीना, फिरत प्यास ज्यों जल बिन मीना, कछु सियानप उकत न मोरी, एक आस ठाकुर प्रभ तोरी, करूं बेनंती संतन पासे, मेल लहू नानक अरदासे।

मन बच क्रम प्रभ एक त्याए सर्व फला से जन पा सर्व फला सोई जन पाए धार अनुग्रह अपना प्रभ कीना केवल नाम भगत रस दीना आद मद अंत प्रभ सोई नानक तिस बिन अवर न कोई।

रह गए मन भुट्ठा निरंकार जियो ताकांत न पाइए ऊंचा अगम अपार जियो जिस प्रभ अपना विसरै सो मर

गुण संग रहंसी खरी सरसी जारावी रंग रातै अवगुण मार गुणी कर छाया पूरे पुरख विधातै तस्कर मार वसी पंचायन अदल करे विचारे नानक राम नाम निस्तारा गुरमत मिलह प्यारे वर पायड़ा बालड़िए

अनंत कार्यां दी मर्यादा दे अनुसार लास्ट शब्द गायन करके फिर आप जी पासों खेमा दे जाच कहवांगे जी। आओ प्यार सहित सारियां संगतां मिल करके शब्द गायन करिए। पूरी आसा जी मनसा मेरे राम, मोहे निर्गुण जियो सब गुण तेरे राम।

वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमरकै गुरु नानक लेंते आए फिरंगत गुरु ते अमरदास रामदास सै हुई सहाय अर्जन हर गोबिंद नौ सिमरौ श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई है जिस

अपने पंथ दे सहाई दतार जीओ श्री ननकाना साहिब अते होर गुरुद्वारे गुरुधाम जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया है खुले दर्शन दीदार सेवा संभाल दा दान खालसा जी नूं बख्शिश करो हे निमाणिया दे मान नितानिया दे तान न्योटिया दी ओट धन धन गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी आप जी का पावन पवित्र फुरमान है लख खुशियां।